0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
6: एंड
7: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
8: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
0: एंड AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
2: एंड तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: पाक फौज जिंदाबाद।
10: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
11: It's the loneliness. That's the killer. FM 100.

0: ने दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
5: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: पाक फौज जिंदाबाद।
3: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहाँ हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
4: It's not what you play, it's how you play it. FM 100.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है
2: एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है।
4: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
1: जो तुम चाहो।
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: पाक फौज जिंदाबाद।

0: लेते था एक काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
6: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत।
7: पाक फौज जिंदाबाद।
8: सबसे अच्छा, सबसे

0: जीते 20,000 रूपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रूपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर मर्दानगी है?

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
2: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
4: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
5: एंड AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
6: एंड
7: तो भाई साहब क्या समझे।
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो,

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: मार का हक, जब कौम बने एक आवाज।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशाद बारी ताला है। ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है, वो जो नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले हैं। सूरह नमल।
2: FM 100।

0: 6:05 PM. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. क्योंकि रकमी 100% Islamic.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं. शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद.
3: एग्जाम से सर पे कंबाइन.
4: इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम. Across Pakistan, this is FM 100.
5: Across the nation, there is only 100 FM.

0: से दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
2: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
7: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
8: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
2: एंड
0: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
2: एंड
9: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: मार्का ए हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बनी ताकत और जज्बा बना पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
11: पाक फौज जिंदाबाद।

0: Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum. Pakistan.
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
2: Fund transfer हो या कोई भी bill payment. Always on customer support के साथ.
1: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: जो तुम चाहो.
1: Download the app now.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून.

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।

क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल कर

0: आपका अपना रेडियो स्टेशन, ये है FM 100 पाकिस्तान। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक खान। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। आए उनसे गपशप लगाते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 7 तारीख से आगाज हुआ था और 8 तारीख थी और 10 तारीख को वो मलिया मेड हो गए थे। उन्होंने हमें आंखों में आंखें डाल के देखा था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके?
1: वालेकुम
0: सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत ज्यादा मुबारकबाद, एक साल मुकम्मल हो चुका है, सालगिरह हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर इस खुशी में, इस जज्बे के तहत कि वी हम जो पाकिस्तानी हैं एक मुतहद कौम है और हमने दुश्मन हमें देखेगा तो वो सिर्फ देखते ही रह जाएगा, हम कर दिखाएंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने कर दिखाया और उसमें आपने देखा कि जिस वक्त जहाज दुश्मन के 72 पाकिस्तान के 42 और उसके बाद जो 8 जहाज गिरे जिसमें 4 रफेल थे, मिराज था, Su-30 था, इजरायली ड्रोन था, तो उसमें हिसाब जाहिर है वो पाकिस्तान के स्ट्रेटजी, पाकिस्तान के पायलट की ट्रेनिंग, उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस, जहाजों का इमेजिनेटिवली यूज करना, दुश्मन के रडार को जैम करना, उनके मिसाइल्स को जैम करना और फिर वो दुश्मन जो ऑफेंसिव पोस्चर में फ्लाई कर रहा था और उस वजह से दुश्मन के जब वो आ रहा था तो सबसे आगे उसके रफेल तैयारे थे और उसका मकसद गालबन ये था कि पाकिस्तान के अंदर कोई शूटिंग करनी है, कोई बम गिराने हैं, तो उस पाकिस्तान के जो जितने तैयारे थे वो उनको डिटेक्ट तो हो गए थे कि जब आप बेस से टेक ऑफ करते हैं तो पाकिस्तान के रडार होते हैं जो उनको सर्वेल कर रहे होते हैं और वो तमाम हमारे एयर बेसिस पे लगे हैं, ऑल अलॉन्ग द फ्रंट भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने कमांड पोस्ट पे फिर वो इन्फॉर्म करते हैं ऑपरेशन रूम में किस तरह इतनी जहाजों की फॉर्मेशन है जो फ्लाई कर रही है और वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है, तो फिर पाकिस्तान के जहाज भी एयरबोर्न हो गए थे और जब उन्होंने देखा कि ये तो ऑफेंसिव पोस्चर में आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने भी अपना पोस्चर चेंज करके एयर चीफ ने कहा कि इनको किल देम, शूट देम और शूटिंग के लिए प्रेफरेंस थी वो चूंकि रफेल बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत हाईटेक एयरक्राफ्ट है, पहचाना जाता है दुनिया में, तो कोशिश की गई, कहा यह गया कि आपने रफेल को शूट करना है। अभी तो हमने 4 शूट किए हैं ना, इससे ज्यादा भी शूट कर सकते थे लेकिन फिर ये कहा गया कि शायद अगर ज्यादा मारे गए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ओपन वॉर में शुरू हो जाए, ऑल आउट वॉर में शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से अपनी गनों को रोक दिया गया और 8 तैयारों पर इतफा किया गया। फिर दुनिया ने, पूरी दुनिया ने उसको कवर अप भी किया, कवर भी किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिफेंस आर्टिकल, डिफेंस जर्नल, जो आप उठा के देख लें उसमें कहा कि आप समझे कि पाकिस्तान ने 52 मिनट में भारत को किस तरह से धूल चुकाई है, उस एयरफोर्स को किस तरह से शिकस्त दी है, तो ये इंडिकेशन थी और वही चीजें हैं जो अब जंग हमने नहीं शुरू की थी बुनियादी तौर पर,
0: बिल्कुल सर
1: जंग भारत ने शुरू की थी और 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी आपको बात याद है, उससे पहले जब वॉर थ्रेट डेवलप हो गए थे तो इमरान खान ने कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि हम विल हिट यू बैक, अगर आप कुछ करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, हम आपको मारेंगे,
0: कर गुजरेंगे।
1: उसके बाद जी हाँ, आप 2019 में आपने देखा जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उनका एक जहाज आया तो फिर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया और Su-30 जो वो भारत के अंदर गिर गया था, अभिनंदन पाकिस्तान में आके गिरा था, पाकिस्तान के लोगों ने उसको पकड़ा था। तो 2019 का सबक काफी होना चाहिए था कि उसके बाद पाकिस्तान ने टेलीविजन चैनल पे आके

0: हम सोचेंगे नहीं, हम आपको मारेंगे,
1: कर गुजरेंगे।
0: उसके बाद आप 2019 में आपने देखा, जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उनका एक जहाज आया, तो फिर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया और SU-30 जो वो भारत के अंदर गिर गया था, अभिनंदन पाकिस्तान में आके गिरा था, पाकिस्तान के लोगों ने उसको पकड़ा था। तो 2019 का सबक काफी होना चाहिए था कि उसके बाद पाकिस्तान ने टेलीविजन चैनल पे आके ये कहा, DGISPR ने, मुझे उनके लफ्ज याद है, कि वी हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आर चूजिंग एट द टारगेट ऑफ आर चूजिंग, जो बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि दुश्मन से आप अपना प्लेस ऑफ अटैक और टाइम ऑफ अटैक हमेशा सीक्रेट रखते हैं, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वॉर जो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने उसे सीक्रेट नहीं रखा, हमने कहा अच्छी आवांगे एंड विल हिट यू एट द टाइम ऑफ वॉर। फिर आपको बताया हम गए, हमने जाके उनके एक ऐसे हेडक्वार्टर पर हमला किया नौशेरा वैली में, जहां इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद था और वो ब्रीफिंग दे रहा था, GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड भी उधर मौजूद था, वहां पर GOC 16 कोर भी मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने उस बंकर को नहीं अटैक किया जिस बंकर के अंदर वो बैठे हुए थे, जिस ऑपरेशन रूम में वो बैठे थे, पाकिस्तान ने उसको अटैक किया जहां पे इर्द गिर्द की जगहें थी, लॉजिस्टिक, और कह दिया कि उनको बता देना हम आए थे। तो इस दफा उनको सबक ले देना चाहिए था उससे कि यार ये तो कह भी चुके हैं और हिटबैक भी करेंगे और पहले भी किया, लेकिन अब जहां पे इस किस्म की क्यादत हो, जहां पे लोग ये कहते हो, जैसे अभी एक BJP के लीडर का बयान आ रहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो तो लोगों को चाहिए कि वो गाय का गोबर अपने बदन पे लगा ले तो उनपे तापकारी के असरात नहीं होंगे, न्यूक्लियर तापकारी के असरात नहीं आएंगे।
1: सर ये समझते क्यों नहीं है, ये इस तरह की
0: जब आप मजहबी जनूनियत से होते हैं, जब आप हिंदुइज्म को जनूनियत और कोई दुनिया में कोई रिलीजन वॉर की तरगीब नहीं देता, हिंदू रिलीजन भी नहीं देता, हालांकि उनके रिलीजन में ऐसी ऐसी मसाल मौजूद है, जिधर वो ये कहते हैं चंकिया की जो फिलॉसफी है, जिसमें वो कहते हैं कि जब आपको किसी से अपना गर्ज हो तो उससे हाथ मिलाएं, और हाथ मिला के अगर आपका काम हो जाए तो पीछे से छुरा घोंप दें, अगर दोस्त भी आपका काम, आप दोस्त से भी अगर आपका दोस्त भी आपका काम ना करे उसको भी मार दें, तो ये तो चंकिया की फिलॉसफी है ना, कि जिसके ऊपर वो, तो उसमें वो समझे कि शायद पाकिस्तान, और आप बेवकूफी देखें कि पाकिस्तान के ऊपर 22 अप्रैल को रात को हमला, जो अपना पाकिस्तान के ऊपर 6 मई को हमला किया रात को, 24 स्ट्राइक की दोबारा जगहों पर, और उसके बाद फिर वो मस्जिदें थी और वो मदरसे थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान, उनका फॉरन मिनिस्टर कहता है कि ये हमने पाकिस्तान को रिंग करके बताया, पाकिस्तान फौज को, कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया इसलिए आप इस टसल में ना, और बेवकूफ के बच्चों जब आप किसी मुल्क के अंदर हमला करेंगे तो उसकी जो फौज है वो खामोश बैठी रहेगी,
1: नामुमकिन।
0: अभी मैं मार्को रूबियो की एक स्टेट मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था
1: जी सर,
0: उसके अंदर उसने ये कहा कि जी ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, ये उसके अल्फाज में आपको कह रहा हूँ, तो कहते हैं जब हमारे जब आप किसी दुश्मन पे हमला करेंगे तो वो स्टूपिड ही होगा दुश्मन, जो रिटेलिएट नहीं करेगा।
1: एग्री।
0: तो फिर हमने तो रिटेलिएट करना था ना, हमने कह दिया कि फिर हम मारेंगे आपको, फिर हमने मारा और ऐसा मारा
1: पूरी जिंदगी याद रखेंगे
0: कि बब की बैटरी तबाह की, उनके ब्रह्मोस मिसाइल की साइट तबाह की, उनके डिफेंसिस को तबाह किया, उनके ब्रिगेड क्वार्टर पे मारा, और उसके साथ साथ जो 8 रफेल है जिसको ट्रंप तो 11 तक ले गया, हो सकता है उसको 15 तक भी ले जाए, उसको पता कोई नहीं तो इसलिए पाकिस्तान ने वो सबक सिखा दिया है कि अब कुछ सबक आ जाना चाहिए। अभी भी वो फिर उनका वो जो लोग हैं बेवकूफ किस्म के, वो उनका एक डिफेंस मिनिस्टर है वो नींबू सिंह, राजनाथ सिंह वैसे उसका नाम है, लेकिन वो है पूरा नींबू, क्योंकि वो आपको पता है रफेल जब आए थे तो उसके ऊपर नारियल फोड़ रहा था और नींबू निचोड़ रहा था,
1: जी
0: उसने उसके टायरों के नीचे नींबू रखे हुए थे, तो मुझे तो लगता है कि वो जो उसने नींबू निचोड़ा था ना रफेल के ऊपर, तो नींबू की खुशबू थी जिसने PL-15 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जाके वो रफेल को लगा और रफेल दबा हो गया।
1: सर जब भी इलेक्शन के कत कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन 2016 का देख लें, आपने 2019 की बात की, अब
2: 5:30 PM This time check is brought to you by
3: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं, डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।

0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: किसने कहा था पैसे बचा।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत। पाक फौज जिंदाबाद।
3: को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत ज़वाबित लागू है। अस्करी बैंक।
4: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने।

सा हम बड़े पुरसकून थे भाई, आर्मी मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, नेवी मौजूद है, हमें क्यों टेंशन लेने की जरूरत। सबसे बढ़ के हमारे अंदर भी जज्बा कि हम बॉर्डर पे जाके लड़े हैं, शहादत हमें भी नसीब हो, और जब अल्लाह का करम हो तो हमने वो जंग जीती, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, याद है ना। और जैसा कल DGISPR ने कहा था कि अभी हमने सिर्फ अपना 5-10 या ज्यादा से ज्यादा 15% शो किया है, मैं उसको राउंड अबाउट 10% ही कह देता हूँ, क्या ख्याल है, 90% रहता है अभी तो। इतने गौरी मिसाइल क्या कुछ हमारे साथ, इतने मिसाइल की रेंज है अब्दाली और क्या कुछ हमारे पास मौजूद है, हमने उनको यूज ही नहीं किया। और सबसे बढ़ के फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिंदगी में पहली बार, इस दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ कि अपनी सरजमीन पे रहते हुए दूसरे की सरजमीन पे जहाज, एक नहीं दो नहीं पूरे 8 जहाज गिराए हमने। और अगर हम उनकी सरजमीन पे चले जाते तो फिर उनका क्या हाल होता। वो अक्सर कहते हैं ना कि, बल्कि मैं ही कहता होता हूँ कि श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को जिलत आमेज सबक सिखाया हम लोगों ने। आप लोगों के साथ साथ मार के हक की खसूसी निश्चयात FM 100 के इस्लामाबाद स्टेशन से आप सुन रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अक्रॉस पाकिस्तान। व्हाट्सअप ऑल माय रेडियो फ्रेंड्स, हमसे राबता करना चाहते हैं तो 051 इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-111-100। इन द मीन वाइल आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं 03069293636। आई अगेन रिपीट 03069293636। Wherever you are, whatever you do, stay with me. Good evening, Pakistan. ये जमीन है तो सब कुछ है, ये जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। इस जमीन की कदर करें, मैं अक्सर कहता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया ये जमीन की कदर करते हैं। वैसे तो बातें बहुत कर लेंगे हम, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अक्सर, एक इंसानी हकीकत भी है, फितरत भी है, तो इंसान की दस्तरस में जो चीज आ जाए, ये हमारे बुजुर्गों से पूछे कि किस तरह उन लोगों ने कितनी मेहनत के बाद 1947 में ये वतन हासिल किया, अलामा इकबाल का ख्वाब हकीकत बना कायद आजम मोहम्मद अली जिना की कायद की सूरत में। सो जिंदा दलाने शहर कराची, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो, ड्राइविंग करें तो ड्राइव केयरफुली एंड हैव अ सेफ जर्नी। रोशनियों के शहर लाहौर, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो, A1 फर्स्ट क्लास हो के करने पे हो, गुड इवनिंग, शाम बखैर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद की शामें तो होती ही दिलकश है, गर्मी भी तो बहुत हो गई है, गर्मियां आ नहीं रही, आ गई है। मार के हकी खसूसी नशियात, हम सब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जमीन है तो सब कुछ है, ये जमीन तो कुछ भी नहीं, कदर करें।

0: सहूलियत दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है।
5: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: मोहम्मद अतीक खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर नादर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: अस्सलाम वालेकुम अतीक।
1: वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है,
2: परफेक्ट
1: सर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत मुबारक हो। हम सेलिब्रेट करें अपनी विक्ट्री को, मार के हक को, कि लास्ट ईयर 7th जब मई था, उससे ये एक तनाव की सूरत हाल दुनिया के लिए शुरू हुई। मगर मैं अक्सर प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानियों ने इसे सेलिब्रेट किया। हमारे लिए तो वेरी फैंटिक फेस्टिवल का वो जंग तो हमें लग रही नहीं थी। जहां से मिसाइल चल रहे थे, हम लोग वीडियोज बना रहे थे, साथ बैठे हुए थे, हम कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे थे। दुनिया को शायद टेंशन होगी, हमारे दुश्मन को टेंशन होगी, हमें टेंशन नहीं थी।
2: FM 100 से तमाम पाकिस्तानियों को मार के हक की मुबारक। और एक साल पहले मई 2025 में जो पाकिस्तान ने एक नई तारीख बना दी, जंगी तारीख भी और कौमी तारीख भी, जिसमें पाकिस्तान ने वंस अगेन अपने से बड़े दुश्मन यानी इंडिया को शिकस्त फाश दी। और न सिर्फ ये कि उसको हराया जंग में, शॉर्ट वॉर में, उसके अलावा इंडिया का जियो पोलिटिकल स्ट्रेचर, उसका जो दुनिया में परसेप्शन था, वो बहुत नीचे आ गया। इट वॉज इन फैक्ट टार्निश्ड और पाकिस्तान जियो पोलिटिकल स्टेचर वॉज एलिवेटेड, यानी पाकिस्तान का दुनिया में जो एक तासुर था, कद बहुत एज अ नेशन कौम के तौर पे बहुत बढ़ गया। और आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है अतीक। पाकिस्तानी कौम, मैं हमेशा कहता हूं, द मोस्ट रिजिलियंट नेशन, बहादुर कौम है और जोश वाली कौम है। और जिसने भी इस पर हमला किया वो बहुत ही बेवकूफ है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान कौम ने रिस्पॉन्ड किया और आगे भी करेगी पाकिस्तान के दिफा के लिए, जब भी खतरा हुआ पाकिस्तान को, जब भी कोई हमला हुआ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की कौम पूरी इकट्ठी हो गई हमारी फौज के साथ, और हमारी कौम फौज के साथ मिलके पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा रेडी रही है।
1: एग्री सर विद यू सर। मगर इस दुश्मन को समझ क्यों नहीं आती फ्रॉम 1947 टिल नाउ? अगर मैं पिछले तीन चार साल की, मतलब पिछले तीन हिस्ट्रियों की बात करूं, 2016 की बात कर लूं जब भी इलेक्शन होता है, 2019 आपके सामने है, उनके पायलट को हमने पकड़ा और क्या कुछ किया, अब 2025, फिर भी से अकल के नाखन नहीं लेता है या इतने ही, मतलब हम कहते हैं एक तो अनपढ़ और बिल्कुल ही, मतलब समझ से बालातर बात है कि उनको समझ क्यों नहीं आ रही, कि मतलब क्या वजह है आपके ख्याल से, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू?
2: इसकी बड़ी दो वजूहात हैं। एक वजह तो है कि इंडिया ने अपने ऑब्सेशन में, अपने दिमाग में, यानी इंडिया के दिमाग में और उसका जो कोर इंडिया है, उन्होंने एक ओवरसाइज्ड जियो पोलिटिकल एजेंडा बनाया है, जिसका मतलब है जिस इंडिया, अखंड भारत, शाइनिंग इंडिया, ग्रेटर इंडिया वगैरह वगैरह, ये उसके मुख्तलिफ नाम है और भी हैं, वो दुनिया में ये तासर देना चाहते थे और देना चाहते हैं अभी भी अपनी पिछले साल की शिकस्त और बेइज्जती के बावजूद, कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, यानी भारत जो है वो एक बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल पावर जो है एक ही है, अमरीका, और ग्रेट पावर चाइना, रशिया और भी हैं, पुराने जो थे बर्तानिया, फ्रांस, अब नीचे आ गए हैं बहरहाल, और नई बन भी रही हैं। तो वो अपने आप को एक तो दुनिया में एक पावर दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत हैं, और जाहिर है उस ताकत बनने के लिए वो जो समझती हैं जिसको हराना है या हटाना है रास्ते से, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने तो कबूल ही नहीं किया पाकिस्तान को। आपने पूछा 1947 से, तो उन्होंने क्या आपको कबूल किया? 1948 में कश्मीर में जंग हुई, कश्मीर उन्होंने आपसे लिया, हैदराबाद भी लिया और जूनागढ़ भी वगैरह, तो उन्होंने कबूल ही नहीं किया, आज भी कबूल नहीं करते। अब तो वो आप कश्मीर की अमन की बात करते हैं, अमन के रास्ते हल करने की, तो वो आपके आजाद कश्मीर को लेने की बात करते हैं, तो इसलिए दे आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ पीस, अमन पे तो आना ही नहीं चाहते, अगर तो हमने तो बहुत दफा उनको ऑफर किया। ये एक वजह है उनका, ये जो बनाया हुआ उनके ख्याल में, इंडिया के ख्याल में, दिल्ली के ख्याल में, कि इंडिया को बड़ी अजीम ताकत बनना है और उसके लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरे जो उनसे छोटे मुल्क हैं या खत्ते के मुल्क हैं, उनको खत्म करना है या उन पर बालादस्ती हासिल करनी है या उनको हराना है, एक तो ये। दूसरी वजह है उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इन चल रही है, उन्होंने पहले भी जो इवेंट्स इससे पहले, जो बीजेपी की रिजीम से पहले भी, आप समझें, ये लोग भूल जाते हैं कि 1948 में बीजेपी तो थी नहीं, तो नेहरू ने, जो कांग्रेस का था लीडर, उसने फौज भेजी कश्मीर में। 1971 में इंदिरा गांधी ने अगेन फ्रॉम कांग्रेस ईस्ट पाकिस्तान मशरक पाकिस्तान में इसके खिलाफ हमारे खिलाफ फौज भेजी, तो ये कोई नई कहानी नहीं है कि जी बीजेपी की वजह से या मोदी की वजह से शुरू हुआ। फर्क ये है कि इस ज्यादा शिद्दत आ गई है, दे हैव बिकम वर्स, और जो अमन का रास्ता या अमन की कोशिश थी उसको उन्होंने पीछे और पीछे कर दिया, जो भी थी पहले थोड़ी सी थी वो भी खत्म कर दी है या कोशिश की है। तो ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनका या इंडिया के अंदर, अभी उन्होंने इंडिया का जो मीडिया है वो बिल्कुल बॉलीवुड या एक अनरियलिस्टिक या गैर हकीकी मीडिया के तौर पे उसने ब्रेन वॉश किया हुआ है इंडिया के अच्छे खासे लोगों को, जो इस कहानी है कि पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान में हर खराबी है, पाकिस्तान को उन्होंने हराना है और वगैरह वगैरह। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये मिलाएं तो आपको समझ आती है जो आपका सवाल है कि अगरचे उनको क्लियर है कि पाकिस्तान तो अपना दिफा कर सकता है और करेगा और दिफा से ज्यादा करेगा, उसके बावजूद ये बार बार ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि दे आर ऑलरेडी इन देयर माइंड सेट, उन्होंने अपने आप को खुद फंसाया हुआ इस गेम के अंदर। हमने नहीं फंसाया, हम तो अमन ऑफर करते थे पहले भी, अभी भी करते हैं।
1: एग्री सर विद यू सर। थोड़े पिछले साल में चलते हैं, 2025 7 मई और आज 8 मई है, इस वक्त क्या सिचुएशन थी, आप कहां पर थे और क्या हो रहा था? और माशाल्लाह आप तो अंदर के बंदे, मैं अक्सर कहता हूं बरगीजी नादर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो क्या सिचुएशन थी, क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी?
2: पिछले साल में भी जब ये हुआ तो आपको पता है आप सबकी तरह तमाम पाकिस्तान यूनाइटेड था पाकिस्तान के दिफा के लिए, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ और बार चीजों के अलावा एक चीज मीडिया थी हमारी, तो जिस हम तो रहूं मैं किताबें भी लिखता हूं जियो पॉलिटिक्स पे और डिफेंस सब्जेक्ट्स के ओवर वॉर पे, और दूसरा इस लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान ने जंग जीत भी ली 4 दिन की, तो उसके बाद भी मैंने आर्टिकल लिखा जिसका नाम था विक्ट्री टू पाकिस्तान। उसमें और बातें बताने के अलावा हमारी फौज एयरफोर्स नेवी वो सारी कार्रवाई और जो हमने जीती वो बात करने के अलावा दो बातें कही थी मेन, वो ये थी कि एक तो इंडिया दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा या बदला लेने की या दोबारा उस पॉलिसी पे कायम है पाकिस्तान दुश्मनी की, एक तो ये, और दूसरा ये कि बहरहाल हमको चाहिए कि हम अमन के लिए कोशिश करें क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तान तो जारियत नहीं कर रहा, लेकिन आप अगली जंग के लिए भारत ने करनी है सिंधु 2 नाम दे 3 नाम दे जो भी नाम दे आप, यानी पाकिस्तान उसके लिए तैयार रहे। तो ये पिछले साल की बात है और उसके दौरान जब ये हो रही थी जंग, शॉर्ट इट वॉज वेरी शॉर्ट, आपको पता है 4 दिन का टाइम था 7 से 10 तक, तो उसके अंदर हम फुल टाइम अपने जो भी हमारी मुख्तलिफ तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करने के, अब हर चीज तो मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन मीडिया के ऊपर जो काम था वो मीडिया की, देखे ना आजकल एक जंग मीडिया की जंग है, दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, दिस इज अ वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, तो मीडिया की जंग बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। अब आज की मीडिया की जंग उतनी इंपॉर्टेंट है शायद उस बाकी जंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी है शायद कुछ लिहाज से उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जो मीडिया का तासुर निकलता है आखिर में वही तारीख बन जाती है ना, तो इसमें मीडिया की तारीख में हम तो 4 दिन यही करते रहे पाकिस्तान के लिए, टीवी पे मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना, मैं भी और आप भी और हमारे जिस तरह FM 100 है, हमारा रेडियो पाकिस्तान है, हमारी टीवी चैनल है, हमारा सोशल मीडिया, हमारा यूथ है, हमारी ख्वातीन है, जिन्होंने सबने मिलकर मीडिया पे भी बहुत काम किया, एक तो मीडिया था उसके अलावा जो बाकी कार्रवाई करनी थी वो पाकिस्तान के दिफा के लिए वो सारी आपके सामने है।
1: सर ओवरऑल तो हमने, मैं बात करूं, हम इस जंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कि कहीं पे जंग की सूरत हाल हो तो वो मुल्क डर जाता है, थोड़ी आवाम डर जाती है, मगर यहां पर तो सेलिब्रेशन थी छोटी सतह पे भी बड़ी सतह पे भी। आप देख रहे मिसाइल जहां से लॉन्च हो रहे थे लोग वीडियोस बना रहे थे, वहां पर साथ बैठे हुए थे, वहां पर नारे लगा रहे थे, और फिर इस कौम को यकजा, स्पेशली पाकिस्तानी कौम की अगर मैं बात करूं, हमें चाहे दुनिया कुछ कह दे, मुझे कह दे, आपको कह दे, किसी को कुछ कह दे, जब बुरा वक्त आता है ना, बुरा वक्त नहीं कि क्रुशियल वक्त कह दे या थोड़ा सा नाजुक वक्त कह दे, जब आता है तो हम सब यकजा हो जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने तीक, एक्चुअली तो मैं तो हमेशा एज अ रिफॉर्मर भी हूं, तो मैंने हमेशा कहा है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, ये मेरे स्लोगन है ब्रिगेडियर नादिर मीर। लेकिन अगर आप अमन में तो यूनाइटेड होना चाहिए आपको उसूलन तो, लेकिन जो जंग का माहौल है या इमरजेंसी है या पाकिस्तान को खतरा है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है जो आप बात करें बिल्कुल ठीक, कि उस वक्त पूरी कौम जो है हमारी, और ये इंडिया ने ये भी बात अंडरएस्टिमेट की तो उनके तासुर में या क्योंकि वो अपना प्रोपेगेंडा, अंग्रेजी है दे वर ड्यूप्ड बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा, यानी जो वो प्रोपेगेंडा करते थे उससे खुद ही बेवकूफ बन गए। प्रोपेगेंडा तो दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए या किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ना कि अपने आप को बेवकूफ बना ले इंसान। बहरहाल वो देवर ड्यूक बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा वो अपने आप को बेवकूफ बना लिए, क्योंकि वो समझते थे कि ये हमला करने से पाकिस्तान बिखर जाएगा, कौम जो पाकिस्तान की है वो तितर बितर हो जाएगी। वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ और हमेशा ऑपोजिट होता है और हमेशा ऑपोजिट होगा। कि ऑपोजिट का मतलब कि पाकिस्तान की कौम एक झंडे, पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे पाकिस्तान के दिफा के लिए। आपने जो बात की सेलिब्रेशन की या बहादुरी की, आप ये देखिए ना कि बेदिया के ऊपर जब पहली बार ड्रोन आए, और ड्रोन नई चीज थी ना पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और जगह तो इस्तेमाल हुए थे दुनिया में, लेकिन हमारी तो पहली बार, इससे पुरानी जो जंगी हुई तब तो ड्रोन नहीं होते थे। तो पाकिस्तान के जो बेदिया के जो लोग थे उस इलाके के, मतलब वो घर से निकल आए बंदूकें लेके, शॉर्ट गन्स लेके, राइफल जो भी जिसके पास जो हथियार था,
1: इवन
2: उन्होंने इससे पहले गुलेले भी जो भी था, मैंने कहा जो चाहे किसके पास चीज कमान ही क्यों ना हो, बच्चे हो, उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। और इससे पहले के फौज और रेंजर्स आके उनको करते तो लोग खुद निकल आए थे। ये उधर की मिसाल, एक साल उसके बाद जो आगे सिलसिला चला जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई, तो वो भी पता होना चाहिए। ये हमारे मशरक की सरहद पे हुआ, बेदिया पे और जगहों पे, मगरबी सरहद पे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, तो चमन के लोग जो हमारे बहादुर पाकिस्तान के बहादुर पश्तून, बहादुर बलोच, हुब्बे वतन, पेट्रियोटिक बलोच एंड पश्तून सब हमारे उस इलाके के, वो निकल आए फौज की मदद करने के लिए और दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये आप देखें ना कि कौम जो है, और इसी तरह कराची के लोग जो हमारे हैं, इसी तरह नॉर्थ के, मतलब के सारे पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के हो, पंजाब के हो, सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो, कहीं के किसी इलाके के लोग भी हों और कोई भी हो, तमाम कौम एज वन नेशन जो नेशन होती है वो आई। इसलिए तो अव्वल तो फौज ही हमारी काफी है इंडिया को लड़ने के लिए, लेकिन फौज के पीछे पूरी कौम पीछे।
3: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
4: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मस्नूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। Schwabe Single Remedies Germany और Hamid General Homeo Pakistan, 75 सालों से आपका एतमाद।
0: Higher No Frost IoT Refrigerator, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: पाक फौज जिंदाबाद।
3: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहाँ हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।

0: Thank you very much, everybody, for joining me right now on FM 100 Pakistan. WhatsApp ke through bhi aap hume messages bhej sakte hain 0306-929-3636. In the meanwhile, aap log aaj ke din ki celebrations ke hawale se bhi mark hai, hab ke hawale se bhi hamare saath shamil guftgu ho sakte hain. Sab to you 0511111100 is the number. Hamare guest hamare saath studio mein bhi maujood hain. मेरे ख्याल से उनको ब्रेक के बाद लाइव ले लेता हूँ, क्या ख्याल है? मगर इन द मीनवाइल दानिश ने हमें ज्वाइन किया है ऑफिसर्स कॉलोनी से, कह रहे हैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद आज के दिन की. जैन हमारे साथ डिडियाला रोड से मौजूद है, थैंक यू वेरी मच जैन. दुआ हमें लाहौर में सुननी है, थैंक यू वेरी मच दुआ. जिंदा दलाने शहर लाहौर. मुस्तफा इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है. जैन हमें कराची में सुन रहे हैं, कह रहे हैं ड्राइव कर रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है और दिल दिल पाकिस्तान ने तो दिल जीत लिया, यही दिल में ख्वाहिश थी. वाह रे क्या बात है. जीशान भी हमारे साथ मौजूद है कराची से, थैंक यू वेरी मच जीशान, आप कराची में हमारी आवाज सुन रहे हैं. सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू वेरी मच सर आपका भी. सैयद शाह हमारे साथ आ चुके हैं फ्रॉम खियाबान सर सैयद, थैंक यू वेरी मच सर. कामरान इस वक्त मरी में हमारी आवाज सुन रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है और खूब आपने पिछला साल हमें याद दिला दिया सर, शुक्रिया. मानो हमारे साथ इस वक्त हैं कहां से, लाहौर से, थैंक यू वेरी मच मानो, आप लाहौर में मौजूद हैं. नायला भी इस वक्त हमें लाहौर में सुन रही हूँ, कह रही है मैं बच्चों को साथ साथ पढ़ा रही हूँ और आपके जोशी खिताबत को सुन रही हूँ, थैंक यू वेरी मच नायला, अल्लाह ब्लेस यू, मुस्कुराती रहे हंसती रहे. आप क्या कह रहे हैं इस वक्त हमें बता सकते हैं. गुड इवनिंग, शाम की चाय पी रहे तो मजा आएगा, द टी इज फैंटास्टिक, मुझे तो वो याद आ गया शाम की चाय से. हाँ के ना
1: सुनिए, करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है.
0: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, एक कौम एक मंजिल है हमारी.

0: बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001।
3: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत। पाक फौज जिंदाबाद।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000

वक्त वक्त की बात, एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब हम अपने मार के हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि मेरा वो गीत चलाने का चाहने की दिल से आ गया, हमें पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे जीतेंगे, कुछ देर बाद चलाते, थोड़ा एंड में चलाते हैं, क्या ख्याल है? थोड़ा देर बाद चलाते। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज मी अतीक खान कमिंग लाइव बराह रास्त विद यू ऑन योर वेरी ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन दैट इज कॉल्ड एफएम 100 पाकिस्तान नंबर 1 ऑन द डायल, आपका अपना रेडियो स्टेशन। और हम आज का स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं स्पेशली फ्रॉम 7 मई से हमने स्टार्ट किया ट्रांसमिशन का एफएम 100 ने, और ये 10 मई तक जारी और सारी रहेगी, जिसपे हम सेलिब्रेट करें अपनी विक्ट्री को। लास्ट ईयर जब हमने इंडिया को हराया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ आठ तैयारे हमने गिराए, और क्या बात थी। इसमें चार राफेल थे, राफेल वो तैयारा है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन है जर्मनी से ओवरऑल, और राफेल के बारे में ये कहा जाता है कि भाई उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मगर हमारे JF-17 ठंड के आगे क्या चीज मौजूद है? थंडर, यस। तो हमने चार राफेल तैयारे गिराए, SU-30 गिराए, और MiG-29 भी हमने एक गिराया, और Mirage-2000 भी शामिल है इन आठ तैयारों में जो हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, पूरी दुनिया हैरान होगी, आपने देखा पिछले दरमियान कितनी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, अक्रॉस द वर्ल्ड कितनी पजीराई मिली है, और कितने लोगों ने कहा कि जनाब ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना। ठीक है, तो यही चक्कर हुआ, इंडिया को अंदाजा नहीं था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये हुआ कि अपनी सरजमीन पे रहते हुए, होता तो ये कि जब लड़ाई होती है हमारे तैयारे उस तरफ जाए इंडिया सरजमीन पे, वहां पर जाके लड़े, अगर हम उधर चले जाते तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फिर अमेरिका को भी लग गया था, क्योंकि ज्यादा गिर गए तो इंडिया की तो लेने के देने पड़ गए, तो फिर ये क्योंकि बहुत ही, मैं बात करूंगा तो बहुत दूर तक और बहुत डीप जाएगी, बट इतने डीप मैं गुफ्तगु करना नहीं चाह रहा, मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर आपसे गुफ्तगु करना चाह रहा हूँ कि हमारे तैयारे अपनी फिजा में पाकिस्तानी फजाई हदूद में रहे, यहां से उन्होंने फायर किया। और सबसे बढ़ के अब आजकल का दौर साइबर का है, मतलब इंटरनेट का दौर है, वेरी फ्रेंकली साइबर अटैक्स के बारे में आप सुनते होंगे, साइबर क्राइम्स के बारे में सुनते होंगे, कि हमने यहां पर बैठे हुए उनके तमाम नेविगेशन निजाम को हैक कर लिया। वेल डन पाकिस्तान आर्मी, वेल डन पाकिस्तान एयर फोर्सेज, एंड वेल डन पाकिस्तान नेवी, सल्यूट यू। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे कि आप लोग हैं तो हम पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कहते ना, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली, नेवर सेफ जर्नी, अपने मंजिल मकसद तक बिल्कुल

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: किसने कहा था पैसे बचा?
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या होगा,
5: चलेगी नहीं दौड़ेगी।
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
7: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
6: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
7: जो तुम चाहो,
6: डाउनलोड द ऐप नाउ।
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज।
9: पाक फौज जिंदाबाद।
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: Around the world.
11: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
12: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Lahore aur uske mazafat mein नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: पाक फौज जिंदाबाद।
1: मार्का हक ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब आवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
2: In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then, FM 100. In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then we introduced this.
3: This is FM 100. This party
2: jam. Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100.

0: तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं। और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: जी, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से?
2: दरअसल ये पूछना चाहता हूँ, मेरे ना अपने नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसके बारे में पूछ।
3: नाम बताइए
1: जी, अपना नाम बताइए।
2: मोहम्मद अदनान।
1: अपनी मदर नेम बताइए।
2: बिल्की सत्तर।
1: डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी।
2: 18/4/1990।
1: चलिए ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं।
3: अदनान साहब, आपको जो नुकसान हो रहे हैं उसमें वजह तो आपको दी है, आप काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन आप चिढ़ भी जाते हैं बहुत जल्दी। आप लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद आपका ट्रस्ट दिन ब दिन खत्म होना शुरू हो जाता है। आप लोगों से इरिटेट होने लग पड़ते हैं, टेंशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो अदनान साहब, सबसे पहले तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने मामलात को, अपने रवैये को। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेढ़े हो जाते हैं, फिर आप खुद भी सम टाइम अफसोस हो जाता है कि कई दफा आप पछताने भी लगते हैं कि मैंने ये कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए था। इसलिए पहले अपना रवैया बदलें, उसके साथ आप सिवाच स्टोन का रेड कॉरल पहन लें।
1: रेड कॉरल
3: जो है वो आपकी लक लाइन के मुताबिक है। अगर आप 14 कैरेट का रेड कॉरल पहन लेते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आप मुस्तकिल मिजाज हो जाएंगे, लोगों पर ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा और ट्रस्ट के बगैर आपके बिजनेस नहीं चल सकेगा। इंसान इंसान का दारू है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर आपके मामले बेहतर होते चले जाएंगे।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम।
1: अरे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: प्याज बात कर रहा हूँ जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछ रहा
3: हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: आजाद कश्मीर से, कोटली।
1: सही है, भाई के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं
2: जी? वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो अपना काम कम्प्लीट कर लेगा? उसका नाम हारून है।
1: ठीक है, उनकी वालदा का नाम?
2: अजमत बेगम है और डेट ऑफ बर्थ है 1993।
1: चलें ठीक है जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया।
3: आपके भाई हारून साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और इंजीनियरिंग कंप्लीट तो करने से पहले ही उन्हें ऑफर आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपनी इंजीनियरिंग ये कंप्लीट करेंगे और इनका जो ज्यादा फ्यूचर में देख रहा हूं वो यूरोप साइड पे देख रहा हूं। उनको यूरोप साइड पे कोई जॉब की ऑफर मिलेगी और ये वहां चले जाएंगे और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप अपने भाई को हारून को सिवाच स्टोन का मून स्टोन पहना देते हैं तो मून स्टोन इनका लकी स्टोन है, ये लकी स्टोन पहनने से इनकी और तरक्की बढ़ती चली जाए।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
1: जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ?
2: मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ
1: जी। रमजान, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से?
2: अच्छा बनवाना चाहता हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
1: ठीक है, अपनी वालदा का नाम बताइए।
2: अस्करी दीदी।
1: और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
2: 3/1/1970।
1: चलिए ठीक है डॉक्टर साहब अभी आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
3: रमजान साहब, जायचा तो बहुत लंबा होता है, जितनी आपकी उम्र है इससे ज्यादा बड़ा लंबा जायचा है क्योंकि जायचा इंसान के पैदा होने से लेकर जब तक वो दुनिया में है जब तक का चलता रहता है। और ये कोई चूंकि सितारों की रोशनी में होता है इसलिए आपने जायचा का कहा, जायचा बहुत लंबा है। आप एक सवाल अगर कर लेते तो वो मैं बता देता हूं। मैं खुद ही आपको बता देता हूं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है। अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आप येलो अगेट सिवाच स्टोन का वो इस्तेमाल करें, उससे आपकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। और बाकी मामलात के लिए अगर आप सिवाच स्टोन पे ऑफिस में रब्ता करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक सवाल कर लेते तो अभी प्रोग्राम में मैं आपको जवाब दे देता हूं।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ो और ना आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। सूरह बनी इसराइल।
1: FM 100।

दोस्तों कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, कभी भी किसी भी लम्हे अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक खास ताकत रखी है। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो इंसान खुद पर यकीन रख जाए। अगर आज आप कहीं गिर गए हैं और सेटबैक का शिकार हैं, तो कल दोबारा उठने का हौसला भी आपके अंदर ही मौजूद है। खुद को बुलंद इतना करें कि हाँ उस तकलीफ से, उस जद्दोजहद से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। अगर हम उसको अवॉइड करेंगे, मेहनत को अवॉइड करेंगे और एक अपनी जिस ट्रैक पर हमने चलने का इरादा किया है, अगर हम उसमें कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेंगे तो भटक जाएंगे। और क्या ही खूबसूरत शेर बड़ा मशहूर है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि ये है कि आप हर हाल में मुस्कुराना जानते हो। जो लोग मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते ना, वही लोग एक दिन कामयाबी की नई मिसाल बन

दोस्तों, कभी किसी की बातों से अपना एतमाद मत तोड़िए। दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों पर तनकीद करती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो स्टैग्नेट रहते हैं, रुके रहते हैं और आम भीड़ के साथ चलते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते, और जो प्रोमिनेंट होते हैं उन पर पत्थर तो पड़ते ही हैं। उन पत्थरों को तनकीद मत समझिए, उन पत्थरों को ब्लेसिंग समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बस अपने सफर पर यकीन रखिए, मंजिल खुद आपकी पहचान बना लेगी। जो सफर की धूप में जल के निखर जाते हैं वही इंसान जमाने में अमर हो जाते हैं।

0: सहूलियत दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
2: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
3: मार्का हक, आवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत। 1, 2, 3, पाक फौज जिंदाबाद।
4: तेजी से है,
5: अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो रास्ते भी तो मुश्किल होंगे, लेकिन याद रखिए, आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिलों तक नहीं लेकर जाते। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते रहना है। जब शाहीन हवा में उड़ता है और तूफान का मुकाबला करता है, अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ाता है, तो हवा उसके परों के नीचे से गुजरती हुई उसे ऊंचाई पर लेके जाती है। जब दुनिया की मुश्किलात आपको थका दें, वो थकावट आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा रही है, वो थकावट

मेहनत को आप अपने ऊपर ब्लेस्ड समझिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं कर पाते, आप थक रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं।

जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया सफा, हर दिन एक नई सुबह और नई दुनिया का सामना। अगर कल का बाब बुरा था तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी खत्म हो गई। नहीं, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है, अंधेरा कभी भी हमेशा नहीं रहता। दोस्तों, कामयाबी किस्मत से नहीं मुसलसल मेहनत से मिलती है। जो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं वही लोग दुनिया में फर्क पैदा करते हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो परेशान मत हो, बासोकात टूटना जरूरी भी होता है ताकि इंसान पहले से ज्यादा मजबूत जरूर हो जाए। जो टूट कर भी संभल जाए वही असल इंसान है, दर्द को जीत लेने वाला ही सुल्तान है।

दोस्तों जिंदगी में कभी किसी से हसद मत कीजिएगा। हर इंसान का वक्त अलग होता है, आपका वक्त भी जरूर आएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए सब्र और मेहनत जारी रखना होगी। सब्र करने वालों के हाथ खाली नहीं रहते, वक्त सबको उनका हिस्सा जरूर देता है। कभी अपने ख्वाब छोटे मत रखिए, छोटे ख्वाब इंसान को हिम्मत भी बहुत छोटी ही देते हैं, और बड़े ख्वाब ही इंसान को बड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। अगर आप अपना निशाना सूरज पर रखेंगे तो कमी कोताही हो भी गई तो चांद तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। ख्वाब अगर ऊंचे हो तो रास्ते बनते जाते हैं, हौसले वाले लोग दुनिया को बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, दिल की आवाज सुनना सीखिए। दुनिया हमेशा आपको डराने की कोशिश करेगी, और ये दुनिया है कौन? वही लोग जो आपको मिलते हैं, जो आपको जानते हैं और आपको अपनी ऐनक से देखते हैं, लेकिन आप उनके नजरिए का रिजल्ट तो नहीं है। वो जो आपके बारे में बोलते हैं वो उनके नजरियात हैं, उनकी अपनी एक नजरियात की बनी हुई ऐनक है। आप वो नहीं हैं जो वो आपको कह रहे हैं, आप वो हैं जो आपका अपना दिल आपको कहता है। और अपने दिल को हमेशा पॉजिटिव रखिए, दिल की आवाज को सुनिए। दुनिया हमेशा डराएगी, मगर कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर की आवाज पर यकीन रखते हैं। और अपने अंदर की आवाज रोज खुद को सुनाइए, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं जरूर कर सकता हूं। ये जो मेरे आसपास हैं ना मसाहत हालात हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यकीन जानिए, रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र गुजारी अल्लाह ताला की दी हुई वो ताकत है जो बेयकीनी से यकीनी पैदा कर देती है।

दोस्तों जिंदगी में मायूस कभी भी मत होइएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है और ये कुदरत का उसूल भी है। इज्जत हमेशा किरदार को मिलती है और जो किरदार पर लोग होते हैं ना वो अपनी इज्जत खुद ब खुद बना लेते हैं, क्योंकि दौलत पक्की हो सकती है, कभी आती है कभी चली जाती है, मगर अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा दूसरों के लिए यादगार बना देता है। लफ्जों से नहीं किरदार से पहचान बनती है, इंसान की असल कीमत उसकी नीयत होती है। अगर आज आपको कोई नहीं समझ रहा तो परेशान मत हो, बड़े ख्वाब हमेशा तन्हाई में ही परवान चढ़ते हैं। तन्हा चलने वालों का भी वक्त आता है, एक दिन काफिला उन्हीं के पीछे चलता है। प्यारे सुनने वालों, हमेशा मुस्बत सोच रखिए, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। उसकी बायोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी तमाम चीजें उसको सपोर्ट करती हैं। सोच अगर रोशन हो तो रास्ते आसान होते हैं, अंधेरी सोच वाले हमेशा ही परेशान होते हैं।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय AGS ट्यूबुलर बैटरी। दिल को है आराम।

दोस्तों अगर आज आपको कोई नहीं समझ रहा तो परेशान ना हो, क्योंकि तनहा चलने वालों का भी वक्त जरूर आता है। हमेशा मुस्बत सोच रखिए, और क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। रात के बजे हैं 11:02 और मेरा आपका साथ रहेगा 12 बजे तक, और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद कुरैशी। दोस्तों इस दुनिया में लोगों को माफ करना सीखिए। दिल में नफरत रखकर इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। हां, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ जरूर हुई, लेकिन वो तो आपको तकलीफ दे गया, आप जाने भी दीजिए। उसकी तकलीफ को अपने दिल में पाल कर क्या करेंगे? क्यों उसके दिए हुए इस बुरे तोहफे को संभाल के रख रहे हैं? माफ कर दीजिए, आप खुद भी हल्के हो जाएंगे, दिमाग से प्रेशर भी कम हो जाएगा। हां, आपने एक नया सबक जरूर सीख लिया, और दोबारा उस शख्स की इस हरकत को या किसी भी दूसरे शख्स से ऐसी ही सेम हरकत को पहचानने में आप अपडेट हो गए। हर धोखा जो आपकी तरफ आता है वो आपको अपग्रेड करता है, वो आपको मजबूत करता है, आपकी सोच को वसत देता है। इसको पॉजिटिव लीजिए और लोगों को माफ करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपकी मंजिल है। दोस्तों अगर दुनिया आपको कमजोर समझती है तो खामोशी के साथ चुपके किसी को बताए बगैर बस मेहनत करते रहिए। जवाब वक्त खुद ब खुद देगा। वक्त सबको उनकी हकीकत दिखा देता है, और मेहनत करने वाला एक ना एक दिन जरूर छा जाता है।

दोस्तों, अपने माजी को अपने मुस्तकबिल पर कभी भी हावी मत होने दें। जो गुजर गया छोड़ दें उसे। नई सुबह नए इम्कानात लाती है, नया सूरज निकलता है, और अगर रात की नींद भी कहीं पूरी हुई हो ना, तो सुबह का जो सूरज है वो ऐसा रोशन लगता है क्योंकि अंदर की तबीयत बड़ी पुरसुकून हो चुकी होती है, रेस्ट किया होता है बॉडी ने। तो कल की फिक्र में आज ना खो देना। और आज एक नई सुबह थी और कल एक नई सुबह होगी, और एक नई उमंग के साथ दिन का स्टार्ट कीजिए। यकीन कीजिए, सारी जिंदगी हमेशा हम मोटिवेट रहेंगे अगर हमारा सुबह का वक्त मोटिवेशन के साथ रहेगा। और कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। यह मत सोचिए कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए परेशानी पैदा की, उसने मेरे लिए आसानी पैदा नहीं की। हां, ग्राउंड रियलिटीज हमेशा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो अपनी जात है वो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो आप देंगे वो पलटकर वापस आएगा। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। और ये वो बातें हैं जो प्रूवन है। उस वक्त चाहे आपको बिल्कुल ऐसा महसूस ना आ रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। किसी के रास्ते से कांटे हटाकर देखो, तुम्हारे लिए भी फूल खिल जाएंगे। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बड़े फैसले हमेशा सुकून और अकल से किए जाते हैं। सोच समझ कर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अपने गोल को डिसाइड कीजिए, और जब डिसाइड कर लें तो ठहर के चलने वाले की मंजिल हमेशा हमेशा उसके लिए आसान रास्ते पैदा करती है। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा काम अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए करते हैं, तो एक महीने बाद, दो महीने बाद हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं। मोटिवेशन कुछ नहीं होती जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी यानी के मुस्तकिल मिजाज की, चाहे थोड़ा काम करें रोज करें, लेकिन जरूर

जी तो प्यारे दोस्तों, अपनी खामियों से भागिए मत, इन्हें कबूल कीजिए और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, यही तरक्की का रास्ता है। और जो लोग अपनी कमियों और कोताहियों से भागते हैं, उसको ऑन नहीं करते, वो उसको दुरुस्त भी नहीं कर सकते, उसकी दुरुस्तगी की कोशिश भी नहीं करते। कभी किसी की कामयाबी देखकर मायूस भी ना हुआ करें। हर इंसान का सफर अलग है और हर इंसान के लिए कामयाबी के माने भी मुख्तलिफ हैं। किसी के लिए दौलत को हासिल कर लेना कामयाबी है, किसी के लिए किसी पथ में चले जाना कामयाबी है, किसी आशिक के लिए किसी को पा लेना कामयाबी है। हर एक का सफर अलहदा है, हर किसी का वक्त अलग अलग चलता है, सब्र करने वाला ही मंजिल पाता है। अगर जिंदगी आपको आजमाइश दे रही है तो समझ लीजिए कि आप में बर्दाश्त की ताकत मौजूद है। आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपने आप को मजबूत भी तो कर रहे हैं, और अगर आप पर वो आजमाइश आई ही नहीं तो आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे? आप तो इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल आदमी की इंसान कोई कदर नहीं करता। इमोशनल और जज्बाती इंसान बस अपनी जिंदगी की रो में बहता रहता है और लोगों के इमोशन से मुतासिर होकर अपने आप नुकसान रहता है। किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे वो कह दिया, और मुश्किलें कमजोरों के लिए नहीं आती, ये बहादुर लोगों को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमेशा अच्छे लफ्ज बोलिए अपने लिए। लफ्ज दिलों को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। मीठे अल्फाज इबादत बन जाते हैं और सख्त लहजे रिश्ते तोड़ देते हैं।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद कुरैशी और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान। वक्त हुआ है 11:38 और मैं हूं आपके साथ 12 बजे तक। दोस्तों, हर दिन हमारे लिए एक नया मौका और एक नई सुबह लेकर आता है। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो जिंदगी में यकीन जानिए जिंदगी में आपके लिए हमेशा आसानियां ही आपका इंतजार कर रही होंगी। बस आपने अपनी सोच को मुस्बत रखना है, क्योंकि ये जो मुस्बत सोच होती है ना, ये इंसान को बदल के रख देती है। कभी खुद को दूसरों से कम मत समझिए, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत अजीम हैं। कभी यकीन दिल में उतर जाता है, हर इंसान अपनी जगह खास होता है। याद रखिए, जब आप सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो आपको ये गुमान होता है कि आपकी आवाज अच्छी है, चाहे वो सामने सुनने वाले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं कि आप इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, आप कोशिश करते रहते हैं, आप सीखते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है वही मजाक बनाने वाले आप इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप सलसल अपने आप पर काम करते रहे और आप पर मजाक बनाने वाले लोग रेफरेंस देते हैं कि ये जो शख्स गा रहा है ना, मैं इसे जानता हूं, ये मेरा दोस्त है। क्योंकि कामयाबी के बहुत से मालिक बन जाते हैं और नाकामी का कोई भी वाली वारिस नहीं होता।

दोस्तों वक्त हमेशा हमेशा सिखाता है, कभी नरमी से और कभी वक्त की सख्ती से। हां मगर सिखाता जरूर है, अब आप उसे सीख समझ लीजिए या किस्मत की देवी का मेहरबान होना। हां उस सख्ती को हम किस तरह लेते हैं ये हम ही पे डिपेंड करता है। एक रवैया ये है कि हम उस सख्ती को ये समझते हैं कि ये परेशानियां मुसीबतें सब मेरे ही लिए हैं, और कुछ पॉजिटिव जहन ये लेते हैं कि ये सख्ती मुझ पर है और मैंने इसका मुकाबला करना है और मैं उस मुकाबला करने के बाद ऐसी दोबारा आने वाली सख्ती के लिए मजीद मजबूत हो जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा एक और सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए, और मेरे पास ऐसी बहुत सी सख्तियों को बर्दाश्त करने का हुनर है क्योंकि मैं पहले भी बर्दाश्त करके उनका हल तलाश कर चुका हूं। आप मजीद मजबूत हो जाएंगे। ये मेंटल अप्रोच है, माइंडसेट है। जैसा माइंडसेट होगा वैसे ही इंसान आप बन जाएंगे। शिकायत करेंगे, करते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ उस मुसीबत और परेशानी का मुकाबला कीजिए, उसके हल तलाश कीजिए और आप अपग्रेड हो जाएंगे। और अपग्रेडेड इंसान, मुसीबत सोच रखने वाला इंसान ही कामयाब होता है। कभी भी शिकायतें करने वाला दूसरों को पसंद ही नहीं आता क्योंकि वो हमदर्दी चाह रहा होता है, और हमदर्दी सिर्फ मिलती है उसके साथ, आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आपका दिल साफ है तो देर से सही मगर कामयाबी आपको जरूर मिले। नियत अच्छी हो तो रास्ते खुल जाते हैं। सच्चे लोग देर से मगर

मैं हूं शहजाद कुरैशी और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान। वक्त हुआ है 11:51 और 12 बजे तक मेरा आपका साथ है। दोस्तों, अपनी जिंदगी को कोई ना कोई मकसद जरूर दीजिए, क्योंकि बगैर मकसद के गुजारी हुई जिंदगी, बेरब्त जिंदगी एक उजाड़ तबीयत पैदा करती है और बेमकसद जिंदगी इंसान को बस थका देती है। कोई मकसद डिसाइड नहीं किया, जिसने बुलाया उसके पास चले गए, कोई मंजिल नहीं, वक्त जाया किया, यही नहीं पता कि अगले पल क्या करना है, कोई गोल डिसाइड नहीं किया, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, उसके लिए कुछ नया सीखना है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है? जिनके ख्वाब जिंदा होते हैं ना, दुनिया में वो कुछ कर जरूर जाते हैं। मोहब्बत और इज्जत बांटिए बस, और यही सी चीजें जो है वो इंसान को बड़ा बनाती हैं। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, हां वो लोगों के सामने थोड़े प्रोमिनेंट जरूर हो जाते हैं अपनी लग्जरी की बेस पे, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान को देखकर, उसकी नेमतों को देखकर इंस्पायर जरूर होता है, लेकिन उस शख्स से जिससे वो इंस्पायर हो रहा है उसकी लाइफ जर्नी के बारे में नहीं जानता। वो सिर्फ उसकी जाहिरी नमूदो नुमाइश से मुतासिर हो रहा है, और अगर वो उसके पीछे की कहानी समझे तो उस कहानी को कॉपी करके वो उतनी मेहनत कर सकता है और खुद अपने लिए वैसी जिंदगी बना सकता है। तो दूसरों से इंस्पायर होने की बजाय उनकी कहानी से इंस्पायर हो, और उनकी उस कहानी से इंस्पायर होके वही कदम उठाइए, कॉपी कर लीजिए जिस तरह उसने जिंदगी में मेहनत की। यकीन जानिए, उन फुटस्टेप पर चलकर आप भी कामयाब जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जो अल्लाह ताला ने सबके लिए रखा है कि जो भी उसके बताए हुए उसूलों पर चलेगा वो उसी खास मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगा। तो जिंदगी बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत किया कीजिए। बस अपनी मंजिल डिसाइड करें और यकीन रखें कि आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रोज एक कदम उठाइए।

दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ फौरी नहीं मिलता। कुछ चीजें हमेशा वक्त मांगती हैं और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है। अगर आप अपनी नीयत साफ रखेंगे तो रास्ते आसान हो ही जाते हैं। सच्ची नीयत, और सच्ची नीयत हमेशा मंजिल तक लेकर जाती है, और छोटे रास्ते हमेशा भटका देते हैं। दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखिए, यही बड़े दिल की निशानी है। अपनी जिंदगी में तवाज़ुन रखिए, और काम भी जरूरी है और सुकून उससे ज्यादा जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून नहीं होगा, जिस्मानी सुकून, मेंटल सुकून, तो फिर क्या काम करेंगे? आजकल जो हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं वो हमारी अपनी जात है, हमारा अपना सुकून है, जिस्मानी, जहनी और अपनी सेहत, जिसकी वजह से हम काम भी नहीं कर पाते और उस काम के जो नताइज हैं वो भी अच्छे नहीं हो पाते, और हमारी जो कंडीशंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हमारी जो सेहत की कंडीशंस हैं, वो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज होती है, जिससे हमें सिर्फ नुकसान पहुंचता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि हमें अपनी सेहत को कायम रखना ही पड़ता है, उसके बगैर जिंदगी की जो फैक्ट्री है वो नहीं चलती। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उम्मीद है। जिसके पास उम्मीद है वो नेक्स्ट जो कदम है वो जरूर उठाएगा। उम्मीद अगर खत्म हो जाए तो रास्ते भी खत्म होने लगते हैं। इंसान को ऐसा लगने लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो ऐसी दलदल में चला जाता है जो उसे कुछ नहीं करने देती, क्योंकि वो खुद पर, अपनी जात पर जो एतमाद है उसको खो बैठता है, और जो एतमाद है वो बहुत जरूरी है। इख्तिताम करते हैं, हमेशा अपने वालिदैन को इज्जत दीजिए, उनकी जो दुआएं हैं वो जिंदगी बदल देती है, क्योंकि जब आप अपने मां बाप की खिदमत करते हैं तो वो जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो माने रखती है। वालिदैन से ये कह देना कि मेरे लिए दुआ करना, तो वो तो हर वालिदैन कर ही देते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन उनसे बगैर उनकी इतनी खिदमत करना, उनका इतना ख्याल करना जिससे वो खुद दुआ निकालें, तो वो दुआ, उसका असर कुछ मुख्तलिफ ही होगा। इजाजत दीजिए, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान, मैं हूं शहजाद कुरैशी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, सेम डे सेम टाइम। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफी चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।

विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।